0: is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Havis. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Havis and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: Do you feel at times that you just can't cope anymore? Do you find raising a child in today's society challenging? Join me in my parenting show, where I aim to discuss these challenges of raising our children, ranging from nurturing sentiment to building the leaders of tomorrow. Every Tuesday evening at 7 p.m. live with Sister Navid on Inspire FM or via our Inspire FM Facebook page. The Parenting Show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 5:30.
4: Assalamu alaikum. It's now time for the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation by Sheikh Abdul Rahman As-Sudais and Sheikh Saud Ash.

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
1: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
3: गीत गाते आबशार, ये वादियां उदरिया और कोहसार, यही तो है इंस्पायर एफएम की बहार।
4: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Inna min al-ma'rufi an talqa akhaka bi wajhin talqin. That it is a good deed that you meet your brother with a smiling face.
7: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
8: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
9: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर एफएम।
0: From the studios of Inspire FM, the time is now 8

0: रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिसेंट होल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
1: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
2: While the world watches the crisis in Gaza unfold on the news, MATW is there, on the ground, right now, actively operating inside Gaza, delivering critical aid directly to those who need it. Medical supplies, food, clean water, and emergency shelter when it matters. Your donation can save lives right now, on the ground. Text MATW to 70470 to donate £10 or visit matwproject.org.uk, because when it matters most,

0: खिला बाजार तेरे लहरों के दोश पे आवाज की इस खूबसूरत दृश्य से मुंसलिक हम और आप रहते हैं शो में जिसका नाम है बोल खिला बाजार तेरे। पता नहीं अजीब बात है, जब पूरे दिन में अगर बंदे में जान ना हो या कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हुई हो, लेकिन जैसे ही शो करने आते हैं तो जो पहला शो ऑफ फोर्स शो ऑफ फोर्स आजकल बहुत हो रही है हर तरफ, तो फिर भी अच्छा लगता है जी। चले 9725019390 लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू रेडियो आजाद वेयर योर वॉइस मैटर्स। आज आपके लिए स्पेशल लिसनर शो दोबारा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वादा किया था आपसे इस हफ्ते दो नहीं बल्कि तीन शो करेंगे हम। पिछले हफ्ते की जो नाराजगी थी लोगों की, नाराजगी भी कहा जा सकता है उन लोगों की जिन्होंने कहा जी आप शोज आजकल मिस कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते कि छुट्टी लेने के लिए हमने कहा हम तीन शोज़ करेंगे चाहे कुछ भी हो, तो हम अपने तीसरे शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस शो को हम यूज़ करेंगे जो भी यू नो एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट लिसनर्स शो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम टॉपिक्स में फंस जाते हैं, कैद में हो जाते हैं, तो आज़ाद सी नेचर और तबीयत है हमारी, तो फिर हम लोगों को भी साथ चाहते हैं कि वो भी खुलकर बात करें और शेयर कर सके चीज़ों पर जो भी आपके जहन में, दुनिया में, मीडिया में आप जिन चीज़ों से बौद्र होते हैं या उनके बारे में बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए हाजिर हैं हम। रेडियो आज़ाद की तरफ से सदका जारिया, ठीक है, जो जारिया है कहीं जारिया है, वहाँ से कुछ वापस नहीं आ रिया है, वापस चाहिए भी नहीं हमको, हमारा काम अब जारिया है। 9725019390 को मेहरबा हमारे साथ करते हैं उनसे बात। रेडियो आज़ाद यू रौंदिये
1: जी,
0: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
1: मैंने कहा एलर्जीज ने बड़ा आपको एक्टिव कर दिया।
0: नहीं एलर्जीज तो अब ना भी हो तो मेरे पास अब एलर्जी बहाना रह गया है, जब भी मैं स्लो होता हूँ या काम उल्टा चल रहा होता है, जो भी चल रहा होता है ना, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। मेरा एक दोस्त है वो कहते हैं कि सर कुछ भी हो जाया करे, आप सिर्फ शो, जस्ट शो अप फॉर द शो, रेस्ट यू एंड वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है, जब भी मुझे मोटिवेशन, मुझे जब थक जाता हूँ मैं या मैं किसी दिमाग मेरा फंस जाता है राइटिंग में या किसी और चीज़ में, और आजकल मैं सख्त लॉक लगा हुआ है मुझे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह, लेकिन अगले हफ्ते लॉक भी तोड़ देंगे अगर खुल नहीं रहा तो।
1: आजकल तो वो आ गए हैं लॉक कटर्स आ गए।
0: हाँ जी, आजकल वैसे खबरों में कहा जाता है ना कि हमने इतने इतने टारगेट लॉक किए हुए थे फिर हमने नहीं गिराए। मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, सीरियसली तो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं जी।
1: बिल्कुल, हर मैटर की खसूसियत है। मसलन कि लकड़ी का टुकड़ा आप डालें तो पानी पे तैरता रहेगा, उसको जितना आप नीचे करने की कोशिश करें उबर के ऊपर आएगा। लोहे की है तासीर या लोहे की अपनी खसूसियत यह है कि आप डालें तो पानी के तय में बैठ जाएगा। लेकिन इंसान मैं देखती हूँ सदियों से सेंट सूफीज गुरुज विजनरी लोग आए और सारी कथा कहानी और एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ समझा के चले गए कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक तरह से, मैं ये नहीं कहूंगी कि इल्यूजन उस सेंस में, बट इल्यूजन ये कि आप पैदाइश से बुढ़ापे तक जो कुछ है सब छोड़ के चले जाना है। लेकिन इंसान की फितरत में ये फितना फसाद लड़ाई झगड़ा ये तो शुरू दिन से है और आज भी जारी है, और किसी तरह इंसान ये सब चीजें देखते भालते सुधरने की कोशिश नहीं है बल्कि और पाताल में गिरे जा रहा है
0: जी।
1: तो आज का दौर मैं ये कहूंगी कि वो दौर है कि जिसमें न्यूक्लियर एक बटन की देर है दबाने की, लेकिन इंसान ये नहीं सोचता ना सरहदें रह जाएंगी जब वो लौट के जाना है उसको, तो ना ये माल मता ना ये सब कुछ जो एनर्जी वो परसीव करेगा या गेन करेगा जिसको हम कहते हैं नेकी वो बस जानी है साथ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये देखती हूँ कि हवस सारी ये चीजें चीना झपटी मार धाड़ एक दूसरे के हसद बोगस एक दूसरे को नीचा दिखाना ये सारी चीजें छोड़ता नहीं है और आज भी हम उन्हीं मसाइल का शिकार हैं जो सदियों से थे
0: जी।
1: तो ऐसी क्या चीज कोई मौजूदा हो जो नबी और अल्लाह ताला का हम कहेंगे पैगाम भी नहीं कर सका
0: आसानी हो जाए क्वेश्चन बनाने में, और साथ इसके बारे में कुछ बात भी करते हैं। कोई है हमारे साथ रेडियो आजाद जी रौंदिये जी, वालेकुम सलाम, कैसी हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: बिल्कुल बिजीनेस खत्म हुई आपकी?
2: Oh, I'm always busy, honestly.
0: इसीलिए आपके लिए फिर हम योर हाइनेस की जगह योर बिजीनेस कर सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: फरमाइए।
2: Always busy. So,
0: पिछला शो सुना आपने?
2: I'm sorry.
0: पिछला शो सुन पाई आप?
2: मैंने सुना पिछला भी सुना वो वॉर पे भी सुना एक्चुअली वॉर वाला इट वाज सो अमेजिंग बिकॉज आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड फॉर इयर्स एंड व्हेन आई लिसन टू इट एंड आई लिसन टू इट ट्वाइस बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक व्हाई पीपल फाइट व्हाई दिस कंट्रीज फाइट व्हाई कांट दे जस्ट रेस्ट स्टे इन पीस यू नो
0: स्पेशली व्हाई पाकिस्तान एंड इंडिया ये आपस में इनका क्या चक्कर चल रहा है इतने सालों से ये इसकी कोई ऊंट करवट किसी करवट नहीं बैठता तो बहुत सारे रीजंस अभी समझ आए हैं आपको
2: एग्जैक्टली
0: कुछ चीजें ऐसी थी जो आप कभी सोचती थी कि आजाद साहब जब शो करेंगे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे और कॉल्स कर रहे थे क्योंकि वो मेरा एक पाकिस्तानी होना एक मुसलमान होना एक मेरा फौजी होना और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में क्योंकि वो इन चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज करते रहते हैं और वो ये देखना चाहते हैं यार ये बंदा कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी चीज़ करेगा या हमें बताएगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये बायस्ड आदमी है उनकी ये हसरत बेचारों की जिनको अकल और समझ है उनकी ये हसरत ही रह जानी है लेकिन आपको जो लगता था कि इस चीज़ पे जब हम बात करेंगे तो ऐसा कुछ निकलेगा
2: राइट द थिंग इज नो देयर वाज नो बायस देयर It just looks like it's all, you know, I mean, मुझे तो honestly मुझे politics समझ में नहीं आती है. I'm totally, you know, away from those things. Mm-hmm. You know,
0: so politics जो है ना, politics जो है, it's a ये आर्ट है रेजोल्यूशन का किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए असल में अगर आपको वर्ल्ड की ना अगर आपको थोड़ा सा सोचने और समझने लगेंगे कि तो अगर आपको घर की पॉलिटिक्स नहीं समझ आ रही ना रिश्ते की पॉलिटिक्स नहीं समझ आ रही तो आप कभी भी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स नहीं समझ पाएंगे ठीक है रब जो है वो इंसान से इस बात का तकाजा करता है उसकी ये डिमांड है कि वो अपने दिमाग को खोले चीज़ों को समझे चीज़ों को सब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करें पहले वो सेल्फिश होता है शुरू में नहीं होता वो सेल्फिश आपने देखा बचपन में हम चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर लिया करते थे बच्चे टॉफियाँ ये सारी चीज़ें वगैरह कभी कभी पक्के हो जाते थे किसी चीज़ के ऊपर बिल्कुल इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो दुनिया की देखा देखी में हर बंदा अपनी चीज़ को पकड़ लेता है अपने पैसों को वो बढ़ाता रहता है चीज़ें करता जाता है लेकिन अगर आप इंसान को नहीं समझेंगी ना उसकी तरफ से आने वाली कर्व बॉल जो आपका जहन आपके ऊपर फेंकता रहता है और आपके करीब तरीन रिश्तेदार जिन्होंने आपको पैदा किया उनसे लेकर बाकी के इर्द गिर्द जिनके साथ आप बड़े हुए हैं और दोस्त आपके और आपके करीब तरीन लोग वो एक रिफाइंड सी एक जेलसी में लोग पड़ जाएंगे और उन्हें कभी पता नहीं होगा वो एक कुछ लफ्ज़ होंगे कुछ एक आँख का देखना होगा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिससे आपको सब एक सेकंड के लिए समझ आती है लेकिन उसके बाद आप उसको अनदेखा करते हैं यही वो अनदेखापन है जिसकी वजह से आप बड़े बड़े धोखे बड़ी बड़ी तकलीफ़ें और बड़ी बड़ी परेशानियाँ उठाते हैं हालाँकि पहला साइन पहला सिग्नल ये सब कुछ आपका इंसान होने के रिफाइन इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से आपको पता चल जाता
2: है एज के साथ भी आई थिंक द मोर यू गेट एक्सपीरियंस देन यू लर्न मोर
0: हाँ जी ये एक अच्छा बहाना है सही कह रही हैं आप हम अक्सर अपने आप को ये कहते हैं लेकिन वो गालिब ने कहा था ना हर दाढ़ी वाला बुजुर्ग नहीं होता मैंने एज के साथ साथ लोगों को सिर्फ बर्बाद होते देखा है मैंने लोगों को रिजिड होते देखा जिन लोगों को मैं 20s में जानता था ना वो बड़े फन एक्साइटिंग छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होने वाले लोग थे वही लोग जब उनको मैं 35 40 15 20 साल के बाद मिला वो इतने रिजिड हैं बिना जाने वो रिलीजन के बारे में इतना रिजिड है बिना जाने वो अपनी चॉइसेस इन लाइफ के बारे में इतना रिजिड है बिना जाने वो जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं वो उनके साथ इतने रिजिड हैं और वो उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उनके साथ चलना चाहते हैं लेकिन वो इतने टाइट हैं कि वो कुछ नहीं दे सकते ना कुछ ले पा रहे हैं जो उनको चाहिए वो भी नहीं ले पा रहे तो ये एज के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन सीधी नहीं होगी एज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान को लेकिन एक्सपीरियंस को अगर आप इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते ठीक है अगर आप नॉलेज लिए चले जा रहे हैं इंफॉर्मेशन उम्र के साथ साथ आपको आती चली जा रही है और तकलीफ दे बात यह है कि एक सर्टन स्पेसिफिक जॉब में होने की वजह से जो लोग नॉलेज गेन करते हैं वो समझते हैं हम नॉलेजेबल हो गए वो एक डॉक्टर है बेचारा मरीज ही देखता रहता है 20 साल वो समझता है मैं नॉलेजेबल हो गया हालांकि उसने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर आवर्स जो हैं वो डॉक्टरी में लगाए हैं तो वो डॉक्टरी में नॉलेजेबल हो गया है उसमें अभी वो देख के बता सकता है पेशेंट को चीज़ों को बहुत सारी बातें बिना किताब को देखे बिना कंप्यूटर खोले बिना चीज़ें किए वो बता सकता है एक्सपीरियंस एक सर्टन तरीके का हो गया लेकिन वो अपने आप को नहीं जान पाया वो अपने रिश्तों को नहीं जान पाया अपने क्रिएटर को नहीं जान पाया वो अपने मकसद को नहीं जान पाया इसीलिए ये तमाम ज़्यादातर लोग जब आती है ना बेंटली की चाबी रखते हैं ऐसे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनको सूरत पुरत मारी जाती है जब वो अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं तो मैं खोल के कहता हूँ सर ये ऐसे ऐसे है या मैडम ऐसे है या भाभी जी ये बात ऐसे है तो वो कहते हैं ये तो फिर सारी ज़िंदगी ख़राब होगी मुझे कभी समझ नहीं आई, ये तो बहुत सामने थी बात। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ हमारी प्रायोरिटी नहीं। हाँ एक बात है, अगर मैं आपको पैसे दूँ ना, कि आज से मैं आपको पैसे दूंगा, 9 to 5 में आप कमाते हैं $1.5 लाख, मैं आपको दिन दूंगा $3 लाख, सोने के 8 घंटों को छोड़ के बाकी के जो 16 आवर्स हैं ये आप मुझे दे दें, और ये आप सोच कर करेंगे तो मैं आपके पैसे कम करूंगा या बढ़ाऊंगा, रिजल्ट दोगे कम करूंगा या बढ़ाऊंगा, रिश्ते अगर अच्छे नहीं तुम्हारे चल रहे मैं तुम्हें पैसे दूंगा रिश्ते रखने की, आप यकीन करें ऐसे परफेक्ट रिश्ते बनाएंगे लोग। ये सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है, ये सारा कुछ घूम फिर कर, ये जंगें, ये घर की जंगें, पावर, पावर से पैसे का ताल्लुक है, पावर से बाकी चीज़ों का ताल्लुक है। मैं अगर खोल के रखूँ ना, मैं पूरे इंडिया की हिस्ट्री आपके सामने खोल दूंगा, मैं इस वक्त मोदी जी जो फरमा रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं और आगे क्या होने वाला है ये भी मैं खोल के रख दूंगा, और आज 20 साल के बाद जब ये कोई बंदा सुन रहा होगा वो कहेगा बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पहले में मैंने जो 20 साल पहले बताया था वो भी वैसा ही हो रहा है, क्योंकि नेचर नहीं बदल रही है। नेचर इंसान की नेचर, जब आप के पास कुछ नहीं होता, जब आप बहुत नीचे से उठ के बहुत ऊपर आते हैं, तो वो जो आपके कॉम्प्लेक्सेस, वो इनसिक्योरिटीज़, वो सारी चीज़ें एक बंदे की ज़ात से होते हुए पूरी नेशन में ट्रांसफॉर्म कर जाती हैं, और अगर उसकी सज़ाएं भुगतनी है तो वो बंदा नहीं भुगतता, पूरी नेशन भुगतती है, चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो। बॉर्डर शॉर्डर तो बहुत बाद में, बॉर्डर तो ये 100-200 साल पहले बने हैं सारे, इससे पहले तो बॉर्डर्स नहीं हुआ करते थे। इब्न बतूता याद है आपको, बगल में जूता लेके दुनिया में जहाँ मर्जी चला जाता था, अब हमको नहीं जाने दे रहे, अब हमें हर जगह के वीज़े और ये मसले और वो मसले कर रहे हैं। 200 साल पहले ये कुछ भी नहीं था, 200-300 साल पहले तो इतनी आबादी भी नहीं थी, उन्होंने आबादी को जिस तरह और ये बाकी चीज़ें की हैं, इस वक्त दुनिया की आबादी एक्चुअली नंबर्स में 3 बिलियन के नीचे होनी चाहिए थी, तो 3 बिलियन होती तो ना हाइब्रिडाइज्ड वीट मिल रही होती है आपको, ना आपको इंसेक्टिसाइड्स, पैसे ऑर्गेनिक खा रहे होते, नेचुरल चीज़ें कर रहे होते, सब कुछ हो रहा होता, लेकिन बाकी के 5 बिलियन मुँह ना होते, उनकी ख्वाहिशात ना होती, उनकी चीज़ें ना होती, इतने अरब खरब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ना होते। सो ये सारे का सारा सब पैसे के लिए हो रहा है, जिसका हमारी ज़िंदगी में एक्चुअल में इतना लेना देना नहीं था। वो कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए ज़िंदगी के लिए, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, उसके लिए 7-8 घंटे का काम करना इज मोर देन इनफ, बाकी ज़िंदगी रिश्ते, अकल, समझ और ये सारे काम करने थे जो हमने नहीं किया, तो उसकी सज़ाएँ। घर में भी जंग है, पहली सज़ा पता क्या होता है, ना इल्म होने की या बेइल्म होने की, अपने अंदर की जंग, अपने अंदर से जंग शुरू। आपने खुद महसूस किया इंसान के अपने अंदर कितनी जंग है, वहाँ से आदमी हारना शुरू करता है। तो जो आदमी अंदर की जंग हारता है वो बाहर की जंगें जीतने की कोशिश करता है, वो कभी नहीं जीत सकता। अंदर की जंग रिश्तों में आती है, ख़ानदान में आती है, ख़ानदान से वो सड़क पर आती है, वो ऑर्गेनाइजेशन में जाती है, जो बचपन में हुआ हुआ है वही आम बेचारे सारी ज़िंदगी वही झीलते रहते हैं, और वही का सब आगे जाकर स्टेट्स के अंदर भी वही जंग दुनिया में आपको नज़र आती है। और अभी थोड़ी देर पहले जो शहनाज जी का क्वेश्चन था कि कितने पैगंबर आए, 1,24,000 बताए गए आपको, और उसमें से आपको 28 के नाम आते हैं, बाकियों को हम मानने की मान ही नहीं रहे, ना राम को मान रहे हैं लोग, ना सिद्धार्थ को मान रहे हैं, वो किसी को पैगंबर मानते नहीं, सिर्फ ये कहते हैं 1,24,000 आए थे तो उसमें से 28 बताए गए, 25 से 28 के नाम हैं, बाकी कहाँ हैं, जिस जिसको हिस्ट्री बता भी रही है लोग उनको नहीं मान रहे, सिर्फ कहते हैं हैं, कहाँ हैं, रिजल्ट्स भी सामने आ गए, रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी आ गई, बस नहीं मानना, क्योंकि दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा। हर चीज़ जो हमारी है बस वही हमने दुनिया को बतानी है, बजाय इसके कि उनसे भी देखना है, समझना है, साथ मिलकर चलना है। तो ये वो बातें जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ नहीं रही हैं, और ये बातें सोचने से समझने से आदमी थक नहीं जाता। आदमी जितना इल्म होगा ना, असल में चीज़ दो चीज़ें हैं, कहते जहालत की ज़िंदगी जी लें वो बेइंतहा अज़ाब है, दूसरी तरफ जानना हमेशा ना जानने से बेहतर होता है। वो कहते हैं ना, ईवल यू नो इज़ बेटर देन द ईवल यू डोंट, तो एटलीस्ट यू कैन डिसाइड कि विच वन टू चूज़। और ये कोई इतना लंबा काम नहीं है कि इतना स्ट्रेस ले लें हम मर जाना है हमको। जिस दिन आपको ये एहसास हो गया ना, जो मुझे हुआ था कि आखिर मुझे मर जाना है, तो मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई थी। अगर मर ही जाना है फिर हराम क्यों खाना है, फिर गलत काम क्यों करने हैं, किसी पे जुल्म क्यों करना है, किसी की औलाद को क्यों बर्बाद करना है, अपनी को क्यों बर्बाद करना है, अपने जहन को क्यों बर्बाद करना है, रिश्तों को क्यों बर्बाद करना है, बाकी मज़ाहिब और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अगर जीनियस बनना है तो जीनियस का रास्ता है, ईवल जीनियस बन के क्यों बर्बाद करना है, चॉइसेस होती हैं आपके पास। तो ये सारी बातें जब आप इस तरह सोचते हैं तो इसमें कोई इतना मेरे जैसा आम हैंडीकैप ब्रेन का आदमी जो कि बेसिक फंक्शनल नहीं था और सेन रहना उसका मुश्किल हो रहा था, तो उसने अगर चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में लेके यहाँ तक ज़िंदगी में आ गया है, اسی لیے تو میں لوگوں کی اس بات پہ یقین نہیں کرتا جب وہ کہتے ہیں کہ جی میرا کچھ نہیں بن سکتا یا میرا کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب میں کور میں جا کر ان کو کھول کے دیکھتا ہوں تو یہ سارے لوگ مجھ سے بہتر لگتے ہیں مجھ کو. تو اگر میں یہاں تک آ سکتا ہوں تو ان میں سے کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے, لیکن اپنے اندر کے اس پاور کو وہ ان لاک ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ تالا اندر سے کھلتا ہے, وہ اس کو کھولنا ہی نہیں چاہتے. تو ایک حد کے بعد ہم کیا کر سکتے, بور تو نہیں کر رہے ہم آپ کو؟
2: نہیں نہیں, not at all, not at all. Actually, that's, no. I have learned a lot from your shows, and as I told you before, I'm able to reorganize my life in last few years. Honestly, I'm in a position where I'm totally at peace from inside, outside. Honestly, I have the environment which I wanted to have in my life, honestly. So I have learned so much, and every day when I listen to your show, and you know,
0: but you are actually creating your life. Theek hai, ye jo aapne kaha, jab tak jo do kism ki cheeze mili hui hain, controllable factors aur uncontrollable factors. Uncontrollable kabhi bhi aapke control mein nahi aayenge. Aapne kahan paida hona tha, aapka rang nasal kya hai, aapka kad kitna hona hai, اس قسم کی اور کچھ چیزیں ہیں بیسکس, اور اس کے بعد مرنا کب ہے. آپ نے, آپ کو ایک گفٹ ملا ہوا, آپ کا اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہ ماں کے پیٹ میں ڈیسائڈ ہو جاتا ہے فرسٹ نا لاسٹ 3 months کے اندر. وہ میں کسی دن وہاں کی جو کانسیپٹ ہے ریلیجن کا اور جو سائنس بتاتی ہے وہاں سے آپ کو کانشیس مائنڈ ان کانشیس مائنڈ کے بارے میں تیسرا شو ابھی بھی ہمارا رہتا ہے, جو کہ مجھ سے کوشچنز جو پوچھے گئے ہیں اور بہت سارے ایسے سوال ہیں جو نہیں پوچھ پاتے لوگ, بٹ دے نیڈ ٹو نو دیز تھنگس کہ کیوں ہم بار بار ایک ہی غلطی کرتے ہیں, کیوں سمجھانے کے بعد ہزار دفعہ سمجھانے کے بعد بھی ہم وہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. برین کیسے بنتا ہے, نیورو سائنس کیا ہے, ہم کہاں سے چیلنجڈ ہیں اور ان چیلنجز کا کیا حل ہے, اور ٹف لو کا اصل جو کانسیپٹ ہے. ابھی تک جو باتیں دو شوز ہوئی ہیں اس میں بھی ہم نے وہ بات نہیں کی ہے. جب آپ ان کو اپلائی کریں گے اپنے اوپر, بچوں پہ, بڑوں پہ, دنیا کی کسی بھی چیز کے اوپر, تو آپ کو وہ سارے اس کے ریزلٹس ملیں گے, اور آپ کو ٹف لو اپنے آپ سے, اس دنیا سے, اور رب کا یہ سب نظر آئے گا, کیونکہ رب کا ہمارے ساتھ جو لو ہے وہ بے انتہا لو ہونے کے ساتھ ساتھ ٹف لو اس کے اندر ان بلٹ ہے, بائی ڈیفالٹ انسٹالڈ ہے, جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اور وہ کیوں ہے, اس کی ایک ریزن ہے جو ہمارے رشتے میں بھی ہونی چاہیے, جو انسانوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. تو یہ پھر آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آئیں گی. ریسنٹلی کوئی چیز آج کل کوئی چیز بادر کر رہی ہے, یہ جنگ ونگ سے جو معاملات چل رہے ہیں, کچھ سن رہے ہیں لوگوں سے آر پار کے؟
2: Honestly, I don't listen to the news much. I don't have much time, but yes, when you just go on the internet, you some things pop out, then I listen to the news.
0: Kya lag raha hai aapko, aapko media mein kya lag raha hai, kya kab India media, India ka jo media hai agar aap sunti hain to kya lag raha hai aapko?
2: You know, I don't listen to the much news, of course,
0: thoda bahut sunti hain,
2: because it makes me you know, when I see all this, I don't know, I just become sad. Because when I see innocent lives, you know, being lost, people, you know, and it's all the time that innocent people are the ones who suffer.
0: Oh, isliye wohi to isliye to paida hue hain na, wo inhi experimentation ki nazar hue hain, aur hum sab log us experimentation ki nazar hue hain. ہم تمام لوگ جو ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک دوسرے کے ساتھ, اور جو پچھلی پیڑھی ہے, جو اس سے پچھلی پیڑھی ہے, جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ, یہ نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب آپ ریلیجن کو نہیں جانتے, جب آپ رب کو نہیں جانتے, تو پھر اس کی یہ سزائیں ہیں. آپ کو پتہ ہے جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ 1947 میں اور اس سے پہلے ساتھ رہتے تھے, دیوالی مناتے تھے, عیدیں مناتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, جب وہ پارٹیشن ہوا, انہوں نے ایک دوسرے کو انہی محلوں میں, انہی گلیوں میں جن بچیوں کے ساتھ بڑے ہوئے تھے, جن بچوں کے ساتھ بڑے ہوئے تھے, جن کے ساتھ سب کچھ ہوئے تھے, وہاں پر اتنے بڑے بڑے ظلم دونوں طرف سے کیے گئے, اور ایسے ایسے قتل ہوئے کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے ہم نے ایک دوسرے کے. صرف یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, جب فیول کوئی اور کرتا ہے, مقصد کسی اور کا کچھ اور ہوتا ہے, اور ہم تمام لوگ صرف بیسک ہیومن ہونے کے جذبات میں ہم پھنس جاتے ہیں. اور بہت کم لوگ اس وقت ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ریسکیو کے لیے آتے ہیں, جن کو چیزیں یاد رہتی ہیں, ورنہ وہ کہتے ہیں ہماری بہن مارے گی تو دوسرے کے بھی ماریں گے, یا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئے تو دوسرے کے ساتھ بھی کریں گے. یہ بہت کم لوگ ایسے دنیا میں رہ جاتے ہیں, اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے. ہمیں, اگر ہم ہندو ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہندو کیا ہوتا ہے, اگر ہم مسلم ہیں تو ہمیں نہیں پتہ اصل مسلم کیا ہوتا ہے, اگر ہم کسی بھی ریلیجن سے ہیں اور بھگوان کو, رب کو, لارڈ کو مانتے ہیں, تو اصل میں کیا کرنا چاہیے, انسانی جان کی کیا قیمت, وہ قیمت جس کی وجہ سے وہ انسان خود اپنی جان نہیں لے سکتا، وہ اس کے لیے اتنی سخت سزائیں، کیونکہ اس کے لیے اتنا بڑا بکھیڑا پوری دنیا پوری یونیورس بنا کے رکھ دی گئی ہے. آپ اس ڈیزرشن از ناٹ این آپشن، کلنگ سم ون اینڈ گیٹنگ یو نو کلنگ یور سیلف از ناٹ این آپشن ایٹ آل. یہ اتنا سیکرڈ کام ہے انسان جو ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں،
2: کوئی ویلیو نہیں ہے لائف کی.
0: جب اور دوسرا جب اربوں پیدا ہو جائیں گے نا، دونوں ملکوں میں کم از کم 2 بلین ہونے والے ہیں، سو 2 بلین میں کتنے دماغ استعمال کر رہے ہوں گے، کتنے لوگوں کو بیسک ہیومن رائٹس مل رہے ہیں. اگر آپ سلمز میں جا کے انڈیا میں، پاکستان میں، باقی جگہوں پہ دیکھیں ان لوگوں کو، ان کو صرف نمبرز کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، نہ ان کی کبھی ویلیو تھی نہ کبھی ہوگی آگے جا کر. اور یہ کہ ملک والوں کو یا اوپر والوں کو احساس ہے یہ بہت فنی باتیں کرتے ہیں ہم کبھی کبھی کہ ان کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، یا یہ اٹیک اس لیے ہوا ہے کہ کچھ بندے مر گئے، یا یہ اٹیک اس لیے ہوا ہے کہ فلاں بندے مر گئے. بندے تو روز مرتے ہیں، ہم خود مارتے ہیں اپنے بندے روز، تو باہر سے مر گئے اور فلاں مر گئے، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، سب ہم کو یوز کیا جاتا ہے. لیکن ہمارا دماغ جو ہے وہ بہت ابھی بہت انفینسی میں ہے. مطلب اگر ہزار لاکھوں، یہ کہتے ہیں جی قیامت آ جائے گی، اس سے پہلے انسان نے ریفائن ہونا ہے، تو پھر تو مطلب 10,000 سال کی آپ کو ریکارڈڈ ہسٹری نظر آتی ہے. ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے. ابھی تو میں نا ایک دفعہ کالج کے زمانے کی بات ہے، وہاں پہ ایک ٹیکسلا ایک جگہ ہے پاکستان، تو وہاں پر ادھر پرانے ہڑپا کے زمانے کے بہت پرانے پرانے جو روونز ہیں وہاں ملتے ہیں. تو ہر زمانے میں انسان کو یہ لگتا تھا، اس سے بہت پہلے بھی جب اہرام مصر آپ دیکھتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے پتھر کن مشینوں سے اٹھائے گئے، کیسے وہاں پہنچائے گئے. تو ہر زمانے میں بڑا بڑا کچھ ہوتا رہا ہے، اور کمال قسم کی قومیں آئیں، ان کے پاس زبردست قسم کی ٹیکنالوجی تھی. تو وہاں پہ آپ کیونکہ ایسے انسٹرومنٹس اور ایسے لکوڈز اور ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں جو کہ بتا سکتی ہیں کہ کون سا پتھر، کون سی جو کنسٹرکشن ہے وہ کس زمانے کی ہے. تو وہاں پر ایک دیوار تھی جو انہوں نے نکالی تھی، تو وہ دیوار بدھ مت کے، وہاں پہ بہت پرانے لوگ ہیں اور بدھ جو تھے وہ بیفور کرائسٹ تھے ایکچولی، 400 سے 500 سال، تو ان کا بھی تھا اور ہر زمانے کی جو چیزیں بتائی گئی تھیں. تو 5,000 سال کی کم از کم ایک دیوار تھی جس میں 3 ڈفرنٹ ٹائمز کی کنسٹرکشن ہوئی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب ہے ایک ہی دیوار کے اندر 3 ڈفرنٹ ٹائمز کی کنسٹرکشن ہوئی تھی. ورلڈ اتنی دفعہ ٹاپل اوور ہو کر زمین اوپر نیچے ہو چکی تھی زلزلوں سے، اور اس کے بعد وہ قدرتی وہ انہوں نے چیزیں ایسے بنائی تھیں کہ انہوں نے کاٹ کاٹ کے اس کو ایک چھوٹی سی دیوار بنا دیا تھا، کہ 5,000 سال کی ہسٹری اسے ایک دیوار میں تھی. اور انسانوں نے نہ اس زمانے میں کچھ سیکھا نہ اس زمانے میں کچھ سیکھا. اور اس زمانے میں ایک وقت پہ جب بدھ مت بہت ہو گیا ریلیجن کے طور پہ، تو وہ تو جانور بھی نہیں مارنا چاہتے، اسی لیے ویجیٹیرین بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ان کی، تو وہ ہتھیار بھی نہیں اٹھانا چاہتے. تو ایک وقت میں ان پہ جب ان کو انویڈ کر لیا گیا تو انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے. تو تقریباً 60,000 بدھ کے جو پیروکار تھے، بکشو بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور جو اس کے تھے، ہتھیار نہیں اٹھائے اور 60,000 کو سر کاٹ دیے گئے.

0: लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
1: Inspire 105.1 FM. From the heart of Bedfordshire in Luton, this is Inspire FM.
3: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
4: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
5: Hello, I'm Lisa from Lisa Jane Millinery, based in Stevenage. My message for the day, or for life, would be to be kind. If we were all a little kinder, there would be no hatred. And being an artist, I dream of utopia, a world where there is peace on earth. Please keep listening to Inspire 105.1 FM.
6: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
7: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन होल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
8: बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। मैं रोजगुल बज़्म-ए-नात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ हर जुमातुल मुबारक। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज़ में हमद या नात दूसरों की समातों की नज़र कर सकते हैं। तो सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1
9: एवरी फ्राइडे एट 11 AM।
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।

0: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
1: Aaj kaise yaad kiya aapne? Ye to baaton se baat nikale.
2: आज नहीं, मैं तो शो सुनती हूँ, लाइक व्हाटएवर टाइम आई गेट, यू नो, लास्ट वन आवर यूजुअली, बिकॉज़
1: कॉल करने से पहले भी तो कुछ सोचा होगा ना, कुछ तो होगा दिमाग में.
2: आई लिसन टू योर शो ऑन वॉर, दैट वाज द लास्ट वन आई लिसन, एंड आई वाज ट्राइंग टू लिसन दैट शो ऑन मंडे.
1: वॉर वाले शो से क्या सीखा?
2: वॉर वाले शो से आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टूड इज व्हाट यू एक्सप्लेन्ड. आई वाज यूज्ड टू थिंक व्हाई पीपल, व्हाई दीस कंट्रीज फाइट ऑल द टाइम, एंड यू सेड दैट इज आई फील लाइक इट्स टू मच ड्रामा, टू मच मैस डिस्ट्रैक्शन, इवन डिस्ट्रैक्शन करना होता है, और आई मीन दिस इज नॉट गोइंग टू कम टू एन एंड. नोबडी वांट्स टू दिस टू कम टू एन एंड, यू नो. सो आई मीन लाइक देयर इज सो मच, I don't know. I feel
1: जब जहाँ और आदमी इतना इल्म हासिल करता है ना, इल्म जो है ना उसकी कोई एंड नहीं है. और आप कभी, आपको लगता है ना कि इल्म बहुत हो गया या मेरे लिए इतना काफी है, इल्म कभी काफी नहीं होता.
2: No, and I feel like, you know, I feel like I have to learn a lot.
1: कोई बात नहीं, ये तो आपको क्या, सोक्रेटिस भी कहता था, जब उसको बिल्कुल एंड पे पहुंचा तो उसने कहा था आई नो दैट आई डोंट नो नथिंग. तो और जब हुजूर पाक से पूछा गया कि इंसान को इतना इल्म जब आ जाएगा, इतना वो खोज लेगा, गारों से निकल के महल बनाएगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाएगा, वो ऐसे करेगा वैसे करेगा, तो उसके पास कितना इल्म आ जाएगा, खुदा के इल्म में से कितना इल्म आ जाएगा. तो उन्होंने कहा जैसे समंदर में आप उंगली डालें, बाहर निकालें तो उसके ऊपर जो कतरा रह जाता है बस उतना आएगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा है क्योंकि खुदा खुद सरापा सर से पाँव तक इल्म है. तो जितना इल्म जो है ना, और वक्त और इल्म, वो कहते हैं वक्त को बुरा मत कहो, मैं वक्त हूँ. इब्ने आदम मुझे तकलीफ़ देता है, अजियत देता है जब वक्त को गाली देता है, कहते हैं वक्त बहुत बुरा आ गया है. तो वो रब ही वक्त है, रब ही इल्म है, इस और एक वक्त में बहुत कुछ है. तो इसके बीच में थोड़ा थोड़ा सीखते जाना है, समझते जाना है, ख़ुद को जानते जाना है, अपनी बेसिक ज़रूरतों को समझते जाना है, जो मिलता है उसमें से कुछ ना कुछ देने की कोशिश करना है, सिस्टम को ट्रिगर करना है, अपना रोना धोना बंद करके दुनिया को देखना है कि दुनिया, जब आप दुनिया की तकलीफ़ परेशानी और मसाइल देखेंगे ना, आपको अपना कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगी. मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है पिछले कितने ही 10-15 साल जब से मुझे इस बात की समझ आई है. मेरा एक दुख भी इस काबिल नहीं है कि जो लोगों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और परेशानियाँ मैं उनकी देखता हूँ, जैसे उनकी नींद है, जैसे वो सुबह उठते हैं, जैसे उनके पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है, जैसे वो चीज़ों की उनकी हिर्स हवस ख़त्म ही नहीं होती, जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे उन पे इतना तरस और तकलीफ़ आती है, मुझे अपना सब कुछ भूल जाता है. ना कोई दर्द याद रहता है, ना किसी का मर जाना याद रहता है, ना किसी का छोड़ जाना याद रहता है, ना किसी का तकलीफ़ धोखा, कुछ भी कुछ नहीं मुझे याद रहता, बिकॉज़ दुनिया में इर्द गिर्द इतनी तकलीफ़, इतनी परेशानी और इतने मसाइल हैं कि आप हर वक्त ग्रैटिट्यूड में रहते हैं. हर रोज एक जन्नत का दिन है, एक मौका है, एक चांस है.
2: आई एग्री, यू नो, एक्चुअली दैट्स व्हाट आई फील लाइक, यू नो, व्हेन आई थिंक ऑल सी अराउंड एज यू सेड, आई फील लाइक इवन इफ इनफाइनाइट टाइम्स आई से अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज लेस, बिकॉज वी आर सो ब्लेस्ड. आई मीन वी आर सो ब्लेस्ड इफ यू सी, यू नो, द व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू, अल्लाह सुब्हान तआला हैज गिवन टू अस. I mean, we cannot complain about anything, honestly.
1: और अमेरिका में हम जहाँ रह रहे हैं ना, ये अगर right. अपना खाना सही कर लेना कम वक्त, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और ये GMOs और ये सब निकाल लें, तो इसकी दीवार के साथ जन्नत है, इतनी जबरदस्त जगह है ये, ठीक है.
2: Yes, we have. I mean, that's what I do. Sometimes when you feel like I feel a little down for something or whatever, honestly, I have no reason to be down. You just count your blessings, and when you start counting that, it's you feel like Allah Subhanahu Taala has given you everything. I mean, what do you want? What can? Okay, this is the time now just to give to people.
1: Of course,
2: that's what it is now. Just to give whatever you can.
1: और जो वो थोड़ा थोड़ा भी होगा, वो प्यार से होगा, मुस्कुरा के देना भी होगा, लोगों से बात शेयर करके देना होगा, इल्म जो आपके पास है उसके बारे में शेयर करना होगा, लोगों के साथ चलना होगा, छोटी छोटी चीज़ों को ओवरलुक करना होगा. एक होती है, यू नो, द आर्ट ऑफ लुकिंग, कि गौर करना, ध्यान देना, एक होती है द आर्ट ऑफ ओवरलुकिंग। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक की जाती हैं, लेकिन जब आप कोई सिस्टम बना रहे होते हैं या कोई चीज़ों को सीधा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त ओवरलुक नहीं करना है। इंसानों में जो कुछ है उस पर गौर से हर चीज़ को द आर्ट ऑफ लुकिंग यूज़ करना है, और जो रियलिटी है हर बंदे की वो सब कुछ सामने रखना है। फिर उसके बाद जब आप सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद जितने अच्छे लोग मिलते हैं उनका दिमाग कैसा है, दिल कैसा है, उसके बाद आपने ओवरलुक करना शुरू कर, छोटी मोटी गलतियां, परेशानियां, ये मसाइल, ये आपने ओवरलुक करते रहने, क्योंकि आपने ज़िंदगी आगे चलानी है, बढ़ानी है, रिश्ते आगे चलाने हैं। मेहरबान हमारे साथ रेडियो आजाद ही रौंदी।
3: नमस्ते आजाद जी, कैसे
1: जी,
3: हैं?
1: बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हैं?
3: नमस्ते, हाँ ठीक है, बढ़िया है, ठीक क्या जो भी है। तो हम कह रहे हैं इसी सब इसी टॉपिक को फिर शुरू किया।
1: कोई बात, हमने आज
3: यही
1: तो
3: कहानी
1: दो दिन
3: यही कहानी आप बोलते बोलते जितनी भी बातें आप बताए कल सब में हम लोग सुने, ऐसे बहुत सी चीजें मालूम हुई, क्योंकि उतना तो हमको कभी मालूम भी नहीं था, जबकि हमारे फादर वार में थे, फर्स्ट वार में थे ना सेकंड। तो जब गोलियां वोलियां लगती थी तो वो देख करके, हम सबसे छोटे हैं अपनी फैमिली में, छोटी लड़की को क्या पता सब बातें, तो बड़ा दुख लगता था, गोली जहां जहां पर दागे पड़े हैं पंखा के और पीठी पर। तो वैसे ही है कि ये सब तो हमेशा से होता रहा है और लोग मानेंगे नहीं, सभी लोग करते रहेंगे, इसका तो कोई किनारा ही नहीं स्टॉप होने का। तो लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन लोगों का विचार जो है तो अपने को सुधारना चाहिए, अपने को कोशिश करना चाहिए कि प्रेम से रह करके कितना फायदा है, तो कोई सोचता नहीं है। और आप इतना सब बताते हैं तब भी उन लोगों को समझ नहीं है, तो इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं आजाद जी, आप परेशान हो। यहाँ जो है यहाँ पर मैं किसी के मुंह से यहाँ पर तो अभी तक मिली भी नहीं बहुत से लोगों को, लेकिन इवन माय हस्बैंड भी कुछ नहीं बताया, न कहे न कुछ पूछे।
1: आपके, आपके हस्बैंड ने ये जान लिया होगा ना कि न मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा ढल न जाए कहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जिनके जिनके साथ आपकी खामखा की लड़ाई है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता वो लड़ रहे हैं, ऐसे कई बदबخت लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, उनको पता ही नहीं होता। वो जो लोग अपने आप से लड़ते हैं ना और ख़ुद से हारते रहते हैं, वो दूसरे लोगों से लड़ते रहते हैं। सो ये चीज़ें भी समझनी है साथ साथ, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, चीज़ें होती रहती हैं। किसी को साहब से उन्होंने कहा, और पिछले एक दो दिन से पाकिस्तान में काफ़ी मसाइल हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं लोग, बड़ी परेशानी में, और यहाँ पर भी जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे वो भी पूछ रहे हैं जी कि ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर, तो मेरे ख्याल से फ़िलहाल के लिए आप लोगों को अपने जो ट्रैवल्स हैं जो भी, क्योंकि ये काम अब बढ़ गया है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको क्लियर कट बताया था, जो सवाल पूछा गया था कि जंग होगी या नहीं, तो जंग नहीं होगी लेकिन लड़ाई होगी, ठीक है, लड़ाई होगी और लड़ाई चलती रहेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि मैं साथ साथ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस बात से रिलेटेड तो बहुत सारा, क्योंकि इस वक्त मीडिया जो फैला रहा है, अल्लमान अल हफीज़ कख नहीं पता है मीडिया को, ऐसी फेक न्यूज़ का एक ड्रामा चल रहा है और ऐसी ऐसी बातें घर से घड़ रहे हैं, और अफसोस की बात यह कि अगले दिन शर्मिंदा भी नहीं होते, मतलब इतने बड़े बड़े झूठ दोनों तरफ से, कोई हद होती है ना झूठ की, कम अज़ कम कोई ऐसे झूठ बोलो जो माने भी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर समझते हैं हम भी, केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो हो नहीं सकता, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो चलें, एक जब से इंसान है तब से जंग है, ठीक है, और ये जंगें चलती रहेंगी, जब तक हम और आप जिंदा हैं ये जंगें चलती रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कम अज़ कम कोई ऐसे झूठ होते हैं जो कि आजकल के कोई 1940s या 70s थोड़ी चल रही है, ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदा कैमरा, हर बंदा गन लेके फिर रहा है, कैमरा लेके फिर रहा है, वो हर वक्त वो हर चीज़ देख रहा है, चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो। तो उसको आप छुपा कर और झूठ नहीं बोल सकते दोनों तरफ से। करते हैं बात, रेडियो आजादी रौंदी। हेलो,
4: अस्सलाम वालेकुम आजाद लाला।
1: वालेकुम सलाम, कहाँ रह गई थी?
4: थोड़ी बिजी हो गई थी, थोड़ी ट्रैवलिंग आ गई थी।
1: अच्छा, हमारी अगले हफ्ते आएगी, हम आपको फोकस पे शो कराएंगे, और हमने ना, और हम सब लोग, फिर आपको पता है आप नहीं आती तो फिर मुसीबत बन जाती है, लोग पूछते बिल्कुल ऐसे जैसे आप ड्रोन ना आए इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तानी वैसे ही कैमरा लेके ऊपर देखते रहते हैं कि भाई ड्रोन किधर है। وہ اب میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں لوگ, تو آپ تو بڑے لوگ ہیں.
4: نہیں اللہ, آپ بڑے لوگ ہیں, میں تو بہت معمولی. کون ہے
1: آپ کو پتا ہے بڑے لوگوں کی؟ آپ کو پتا ہے بڑے لوگوں کی سب سے پہلی پہچان یہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خود کو بڑا نہیں سمجھتے. اور آپ کو پتا ہے چھوٹے لوگوں کی سب سے بڑی کیا نشانی ہوتی ہے؟ وہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں. بس یہیں سے آپ کو پتا ہے حسین آدمی کی کیا نشانی ہوتی ہے؟
4: نہیں,
1: وہ کبھی خود کو حسین نہیں سمجھتا. آپ کو پتا ہے کوجے اور انسیکیور آدمی کی کیا نشانی ہوتا ہے؟ اور تعریفیں کرتا رہتا ہے اپنی. تو یہ سیدھی وہ میں جو کہتا ہوں نا کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے جی میں بڑا, میں کہ اگر آپ کو کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ مارگریٹ تھیچر تھی نا, بڑی اچھی لائن یوز کی, اگر لیڈی کو یہ کہنے کی کوشش وہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں لیڈی ہوں, تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ از رانگ سم ویئر. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لیڈی ہیں یا جینٹل مین ہیں, وہ خود پتہ لگ جائے گا.
4: اچھا زیادہ جی, کتنی عجیب بات ہے, یعنی آپ جتنے لوگوں سے ملو وہ خود اپنی تعریف خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, کانسٹنٹلی بتا رہے ہوتے ہیں, بیکم سو انوائنگ, اسپیشلی مجھ سے نہیں برداشت.
1: لیکن وہ نہیں, مزے کی باتیں ہوتی ہیں, لوگوں کو کہنے دیں. لیکن کس قسم کی تعریفیں نارملی آپ دیکھتی ہیں لوگ کرتے ہیں؟
4: زیادہ ایک تو میں اتنی, یعنی ایک تو اپنے کیریئر کی, بس ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. پھر بچوں کی, زیادہ بچوں سے میں بہت پریشان ہوں.
1: آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے لوگ کیوں کرتے ہیں اپنے بچوں کی اتنی تعریفیں؟
4: کیوں؟
1: کیونکہ ان لوگوں کا پرائز پوزیشن جو ہے نا وہ ان کے بچے ہیں جن کی فری ول ہے, اور وہ زیادہ تر ان کے قابو میں نہیں. اور زیادہ تر بچے آج, میں کم از کم اس وقت نا 15 بچے ہیں میرے دوستوں کے, جوان بچے اور ہمارے بچے سب, ٹھیک ہے. اور ہم نے جیسے اپنے یہ بچے, ہم جو چھوٹے دو پال رہے ہیں, 20-22 سال کے ہو گئے ہیں, تو وہ ہر بات مجھ سے کرتے ہیں. ہر بات کا مطلب ہے ہر بات, تو وہ کرتے ہیں. اور باقی جو بچے ہیں اور جو پیرنٹس ہیں, میں میرے دوستوں کے پیرنٹس ہیں, میں ان کی کاؤنسلنگ بھی کبھی کبھی کرتا رہتا ہوں. کوئی کچھ ایسی باتیں جو ان کے پیرنٹس نہیں کہہ سکتے, وہ آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں, میں بڑے آرام سے بڑے سہل پسندی سے کہتا ہوں, اور ان کو یہی پتہ ہے میں ان سے پیار وغیرہ بھی کرتا ہوں. لیکن ان میں سے سارے ہمارے جو بچے ہیں نا, انہوں نے چرسوں سے ویڈ کو نہیں ایکسپیریمنٹ کیا, یہاں سب نے کیا ہوا. انہوں نے ہمارے وہاں کے جو بچے ہیں, کئی جگہوں کے, ابھی شہروں کی بات میں نہیں کر رہا, شہروں میں تو ہمارے بچے بہت امریکن اور انگلینڈ کے بچوں سے بہت آگے ہیں, ٹھیک ہے, ہر برے کام میں, غلط کام میں. پیرنٹس بیچارے, آدمی کو یہ لگتا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو میرے بچے بھی نہیں کرتے ہوں گے, یا ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے بائی دا وے اپنے بچوں کے بارے میں. ہم ان کو کہیں سے ایک ٹیوٹر رکھتے ہیں, قرآن پڑھاتا ہے ان کو, وہ پاکستانی اور مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر ایک دن انہیں کچھ عجیب سا دل کے دورے پڑ جاتے ہیں, پھر وہی چیزیں جو کبھی بھی نہیں کہتے تھے, پھر اس کو کور کرتے کرتے ان کی زندگی گزر جاتی ہے. پھر وہ لوگ کمیونٹی سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, یہ کہہ کے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا, یہ ساری زندگی پھر ایک دوسرے کو بھی شکل نہیں دکھا سکتے. یہ ہوتا ہے جھوٹ میں رہنے کا اور ریئلسٹک نہ ہونے کا. تو جب آپ کی اولاد دیکھیں, جی میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں, میں اس دنیا میں, مجھے اس دنیا میں آئے ہوئے بڑے ڈیکیڈز ہو گئے, میں نے اپنی زندگی میں بچپن سے لے کے آج تک اپنے ماں باپ کی فیملی کی طرف سے سب سے زیادہ پیار دیکھا, وجہ جو بھی تھی مجھے نہیں پتہ, نہ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنی ماں کی طرف سے, جو ٹوٹلی ڈفرینٹ لوگ ہیں, ان سے کی طرف سے سب سے زیادہ پیار مجھے ملا. اپنے فادر کی طرف سے جو فیملی ہے وہ سب سے زیادہ پیار مجھے ملا. میں جب میں نے ایک دو پروفیشن جوائن کی, ان میں مجھے بہت پیار ملا, مجھے اسپیشلی جو جونیئرس تھے وہ اور باقی لوگوں سے. میری لوگ بہت عزت کرتے ہیں, بہت قدر کرتے ہیں, میرے نام پہ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے کروائے, بہت ساری چیزیں کی لوگوں نے, ٹھیک ہے. لیکن میں دنیا میں ایک بندے کا, ایک انسان ایسا تھا جس کا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ میں اس کو جانتا ہوں, ٹھیک ہے, دو بندے کہہ لیں, خلیق صاحب اس میں شامل کر لیں, دو تین لوگ کر لیں. میں کسی بھی ایسے بندے کا جو اس وقت زندہ ہے, میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ وقت پر سٹینڈ لے گا, یا اس کے دماغ کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی کا سٹرکچر یا اس کے اندر رب کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہے. میں کسی کو نہیں جانتا, میں کسی ایسے ہندو کو نہیں جانتا, کسی کو بھی نہیں جانتا جو کہ اصل میں ہندو ہو اور ویداس سیکرڈ وزڈم کی جو بکس ہیں, رگ وید, یجر وید, سام وید, اتھر وید, اگر میں اس کو سامنے بٹھا کے 10 سوال اس سے پوچھوں وہ ایک میں بھی کوالیفائیڈ نہیں. میں کسی بھی ایسے مسلم کو نہیں جانتا کہ جب میں اس سے رب کو, جس رب کو میں کتاب سے پڑھ کے جانتا ہوں, میں 5-10 کوشچن نکالوں, اس میں سے وہ ایک کو بھی کوالیفائی کر جائے. प्रैक्टिकली, कार्रवाई और ड्रामेबाजी में नहीं। मैं किसी एक ऐसे क्रिश्चियन को नहीं जानता अपने, और मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, बहुत तमाम रिलीजन के लोगों को मैं जानता हूँ, अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बेसिक्स खोल के उनसे सवाल करूँ, उनको पता ही नहीं, तो इससे समझ ये आती है कि लोगों के साथ रिलीजन की लड़ाई हो ही नहीं सकती। जब हम मुस्लिम हैं ही नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की है, जब हम हिंदू हैं ही नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की है, जब हम क्रिश्चियन हैं ही नहीं तो लड़ाई किस बात की है। बेसिक्स में ही हमें अभी तक नहीं पता, किताब खोल कर देखी ही नहीं गई, उसमें आप जब देखेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि हम, हमारे रिचुअल्स भी उन तमाम इबादात के खिलाफ हैं जो उसमें लिखी हुई। बाकी बातें तो बहुत बात की, हम लोगों के बारे में हमें ना औलाद से मोहब्बत, जब हमें मोहब्बत का सर पैर ही नहीं पता तो औलाद से जो भी हम मोहब्बत कर रहे हैं वो सब की सब गलत। हमें जब पता ही नहीं है औलाद को पालना कैसे है, बड़ा कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊं, किसी भी इंसान को इस दुनिया में अगर ये पता चल जाए कि एक इंसान को पैदा करके बड़ा करने के अंदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और खुदा की कहाँ कहाँ पकड़ हो सकती है, आप यकीन करें कोई भी जागा हुआ माइंडफुल होश में आया हुआ बंदा औलाद ही ना पैदा करे। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग प्लांट्स नहीं रखने के नहीं इस काबिल कि वो प्लांट रख सकें। मैं जब अपने दोस्तों को, उनके बच्चों को देखता हूँ, लोगों को अपने इर्द गिर्द बच्चे पैदा करते हुए देखता हूँ, मैं डर जाता हूँ। इन लोगों ने बच्चे पैदा कर लिए तो जहनी तौर पर अभी तक बच्चे हैं। ये छोटी सी इंडिया पाकिस्तान के आपस में झड़प हुई है, इसमें ऐसे ऐसे लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, इनके भी बच्चे हैं और इनके भी बड़े थे। इंसान होने के नाते शर्म आती है मुझको कि इस दुनिया में, इस ज़माने में भी हम इतने छोटी छोटी सोच के मालिक लोग हैं और हमें कुछ नहीं पता। और जिस रिलीजन के ऊपर हम इतनी बातें करते हैं, जिसके अंदर 150 फिरके हमने बना लिए, स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग, जिसमें हम अपने अंदर ही लड़ते रहते हैं, और हम इतना नहीं सोच सकते कि जब हम लोग गाय के ऊपर, मुकद्दस गाय के ऊपर इतना लड़ते हैं लोग इंडिया में और लोग पाकिस्तान में भी, लोग क्या क्या फजूल बातें बनाते हैं कि ये बात शुरू कहाँ से हुई थी गाय का मुकद्दस होना, और वही गाय जिसमें मुकद्दस होने पे कितने मुसलमानों को, कितने हिंदू आपस में लड़ चुके हैं और कितने नुकसानात हो चुके हैं, उसमें बीफ के मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नंबर वन या नंबर टू इन द वर्ल्ड इंडिया है, और वो बिज़नेस मुस्लिम ज़्यादा नहीं कर रहे, वो जैन भी करते हैं, वो हिंदू भी करते हैं, और ये नंबर सबको पता है, जाके इंटरनेट पे चेक कर लें, लेकिन कोई नहीं जानना चाहता। मतलब हमारा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही झूठ पे है, सब का सब हिपोक्रेसी पे है। और अगर उस क्वालिटी, उस हिसाब से मैं देखूं इंसान को, तो ये इंसान जो है ना, यकीन करें, सिर्फ चलता फिरता दो टांगों पे, इसको चार पांव पे जैसे किताब में रब कहते होना चाहिए था, और जानवरों से ही रिश्ते विश्ते करके उसी तरह खाना पीना चाहिए, इसको उसी तरह अपने आप को साफ रखना चाहिए, वही बेसिक्स इसकी नीड्स होनी चाहिए। और जैसे जानवर अपनी औलाद के साथ करता है, वैसे हम लोग भी अपनी औलाद के साथ कर रहे हैं बेसिक चीज़ें। और सूअर को तो ये भी नहीं पता होता कि अपनी औलाद के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, वो सिर्फ पैदा करता है। और इसी तरह सांप अपने बच्चे खा जाता है, तो हम लोग, कई लोग जो हैं वो अपनी औलाद को खुद खा जाते हैं, उनके अंदर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई डाल के, इंडियन पाकिस्तानी डाल के, और मुसलमान को तो समझ ही नहीं आई कि ये उम्मा का कॉन्सेप्ट है, एक हद के सरहद का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं इस्लाम में। वो तो हर वो बंदा जो रब को रब मानता है, जो अपनी विल सबमिट करता है, वो दुनिया के किसी रिलीजन में कहीं से भी उठ के आएगा, कभी भी पीछे हज़ारों साल पहले उसका कोई भी रिलीजन था, जब उसने कह दिया रब एक है, पैगंबर ये हैं और ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है, बात ही ख़त्म होगी, कोई लाइंस तो हैं ही नहीं, सरहदें तो हैं ही नहीं। तो ये कहते हैं जी कि म्यूज़िक की कोई सरहद नहीं होती, आर्ट की कोई सरहद, अरे भाई रब के बंदे की कोई सरहद नहीं होती, रब की कोई सरहद नहीं होती, ये तो बहुत पहले का, 1450 साल पहले का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं ना, हम जब फिर कहते हैं जी, यकीन करें कई लोग मुझे कहते हैं इस तरह करके कि ना आप हमें इंसान नहीं समझते, कई दफ़ा हमने महसूस, सच मैं कहता हूँ हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको इंसान नहीं समझता तो मैं इतनी जान क्यों मार रहा हूँ 15-20 सालों से, मुझे तो इसका पता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हालात हैं, जो एक्यूरेट लोग जिनको औलाद नहीं पैदा करनी चाहिए उनके घर में औलाद है, जो लोग इंसान होने को बड़ी सिर्फ खड़े होने को, बैठने को, अंग्रेजी बोलने को, उर्दू बोलने को, डिग्रियां उठा लेने को इंसान नहीं कहते आप। ये सब का सब हमें जब समझ आएगी, हर बंदा कौंड है, हर बंदे देखें, मैंने आज तक इतने लोगों से डिस्कशंस किए, इतने लोगों से, हर बंदे का कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट आता है जहाँ से उसके अंदर का मुस्लिम जाग जाता है, हिंदू जाग जाता है, इंडियन जाग जाता है, पाकिस्तानी जाग जाता है, फलां जाग जाता है, रब का एलिमेंट कभी नहीं उसको जागता उसका, क्योंकि रब के हम न जानते हैं, न समझना चाहते हैं, ना हम इस सफ़र के अंदर हैं। जब तक ये लाइफ को, रब को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं जानेंगे, दुनिया को नहीं जानेंगे, ज़िंदगी को नहीं जानेंगे, हम कभी मजबूत रिश्ते नहीं बना सकते। इतने लोग इश्क करते हैं, मैं ड्रामे थक गया हूँ, ये सुन्नी शिया की मोहब्बतें, फिर पूरी फैमिली से लड़ाई, और उसके बाद जब बड़ी मुश्किल से शादी होती है, और उसके बाद दो चार साल के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर खिंचा खिंचाई, एक उनको सुन्नी बनाने पे तुला हुआ, एक उनको शिया बनाने पे तुला हुआ। ये कोई भी नहीं जानता कि पैगंबर का तो कोई सुन्नी शिया चक्कर नहीं था। जब मुझे पता चला सुन्नी शिया क्या है, मैं कहाँ पैदा हुआ था, क्या हुआ था, मैंने तो ये काम ही ख़त्म कर दिया। मैं तो ना सुन्नी लिखता हूँ, ना शिया लिखता हूँ, तो ना मैं बताता हूँ लोगों को, क्योंकि ये तो चक्कर है ही नहीं। तो ये तो बहुत बाद में आते हैं, जब आपको एक एक्यूरेटली पता चलेगा हुज़ूर पाक नमाज कैसे पढ़ते थे, आपको पता लगेगा कि हम कैसे पढ़नी चाहिए। हमको अभी तक किसी ने रिसर्च की है कि खुदा का बंदा जिसकी वजह से सारा पैगंबर है, उनका नमाज पढ़ने का तरीका क्या था, और हम और हमारे हज़ारों सालों से जो भी ये हमें बातें बताई जा रही हैं, हम क्या कर रहे हैं और कैसे करते हैं, क्योंकि वो चला चलाया हुआ सारा काम है। थोड़ी सी कोशिश कर लेना, आपके पास पैसे आ गए, हम अमेरिका में रहते हैं, कोई अटैक अभी नहीं हो रहा यहाँ पर, बेसिक नीड्स हमारी पूरी हैं, थोड़ी सी रिसर्च कर लेना, थोड़ी सी कामों को फिगर आउट कर लेना। और आपको पता है ये वाली जो हदीस है कि जो इंसान रब को नहीं मानता, वो अगर फिगर आउट करना चाहता है कि रब है या नहीं, वो सिर्फ इस इंटेलेक्चुअल प्रसूट में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है और कोशिश करता रहता है, इसमें वो मर भी जाता है तो वो जन्नत का पहला हकदार है। सिर्फ खोजने का इतना अजर है, इतनी वैल्यू है, ये दूसरों को अपनी तरह करने से कुछ नहीं होगा। आप खुद ही नामुकम्मल इंसान हैं, दूसरे ना को नामुकम्मल बना के आप डायरेक्शन दिखा के अगले की डायरेक्शन गुम हो जाती है, ना आप साथ चल सकते हैं ना चला पाते हैं। तो ये सारी बातों की कोई तुक ही नहीं है। जंगें तो बहुत दूर की बात है, वो तो लोगों को बेचारों को पता ही नहीं है। अगर मैं खुश दिन जंग को खोल के रखूं, इस जंग को, तो आपको पता चले ये जो अभी चल रही है ये कहाँ शुरू हुई थी, ये किसके टेबल पर शुरू हुई थी, ये किस जगह पर हुई होगी, इस वक्त जो ब्लॉक्स हैं उसमें कहाँ पर आपस में मिलकर की होगी, आज से 5-10 साल के बाद जब डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासीफाई किया जाएगा, जो ट्रंप के ज़माने में बता रहा होगा, यही बातें हो रही होंगी कि यहाँ से ये दो बंदे, ये दो मुल्क थे, इन्होंने ऐसा कहा, हमने बीच में से इनको ऐसे कहा और हमने कहा बस इतना इतना करके पीछे हो जाओ। ये सारे का सारा आपको एक दिन डीक्लासीफाई होकर मिल जाएगा। ये पूरी जंग की एक हकीकत एक टेबल के ऊपर ख़त्म हो जाती है, वहीं से ही शुरू होती है। जैसे एक फिल्म होती है, फिल्म एक टेबल के ऊपर बनती है सारी की सारी, उसमें टीयर जर्कर्स डाले जाते हैं, इमोशंस कहाँ से आएंगे, कौन से डालेंगे, ये एक लाइन होगी, ये कॉन्फ्लिक्ट है इसका, ये इसका रेजोल्यूशन होती है इसमें, फिर उसके बाद आता है किसको रखेंगे, उन एक्टर्स के नाम के ऊपर फिर पैसे लिए जाते हैं, फिर उसके बाद किसको राइट्स दिए जाते हैं, वो सब मिल मिलाकर फिल्म पहले से पता होती है, 100 मिलियन की है, 200 मिलियन की है, 23 मिलियन की है, 50 मिलियन की है, उससे पहले उनको पता होता है कि ये इतने में 23, 40, 50 इसके जितने भी बनने ये सब ऐसे बनेंगे और इससे हमारा ये मकसद है और ये हमने इससे हासिल करना है, दैट्स ऑल। एग्जैक्टली इसी तरह ये सारी फिल्में, हम उसमें सिर्फ पॉन का कैरेक्टर करते हैं, हमारी कोई औकात, कोई समझ, कुछ भी नहीं, ना कोई हमारे लिए कुछ करता है और ना हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, यूज ज़रूर हो जाते हैं बिकॉज हम नहीं जानते। और आपको रब का जुमला सुनाऊं मैं, और तुम्हें सुकून कैसे आए तुम जानते जो नहीं हो, समझिए। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का अख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको

है ना। पहला हिस्सा क्या था? अपनी कोशिश और फिर, और ये जो कोशिश और जो जो आप मुतालबा कर रहे हो वो इबादत के तहत है, यानी मैं अल्लाह ताला की इबादत करते हुए अब मेरी ज़िंदगी के मकसद और उसके जो गोल्स हैं, जो मेरे अहदाफ हैं, जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मैं अल्लाह ताला का अब्द बनना चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, अब उन गोल्स पर भी असर पड़ा। जिन चीज़ों के पीछे मैं पहले भाग रहा था इयाका नअबुदु से पहले, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था, अब उन चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहा, किसी और चीज़ की तरफ दौड़ रहा हूँ। अब उस चीज़ की तरफ दौड़ रहा हूँ तो मुझे मदद की ज़रूरत है, अब मैं अल्लाह ताला से मदद मांगूंगा। तो मेरी दुआओं की असल नेचर ही बदल गई पूरी तरह से। और अब हम इस मोड़ पर आ गए हैं मुसलमान कुरान से इतने दूर कि अब हमने अपना अल्लाह ताला से जो रिश्ता बनाया हुआ ना इस वक्त अक्सरियत ने हमारी, उसमें और जो ईसाई ने जीसस के साथ रिश्ता बनाया हुआ है, जो हिंदू ने अपने मंदिर में रिश्ता बनाया हुआ है अपने खुदाओं से, उसमें तकरीबन कोई फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि हम बस अब एक ख्वाहिशात का मज़हब है। अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहा, मेरी मुश्किलें आसान नहीं कर रहा, मैं तो इतनी नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं तो इतनी नमाज़ें पढ़ रही हूँ, मैं तो उम्रा भी किया था, मैं तो फलाने रोज़े नफली रोज़े भी रखे थे, मैं तो सदका भी दिया था, फिर भी कोई बात नहीं मान रहा। इस सारे में क्या है, असल बुनियाद क्या हो गई है? किसी ना किसी तरह मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। फातिहा का मकसद ख्वाहिशात नहीं है, फातिहा का मकसद है मकसद, इंसान की ज़िंदगी में मकसद डालना। एक दफ़ा मकसद आ जाए ना तो अब वो मदद किस चीज़ में मांगेगा, या अल्लाह जिस मकसद के लिए मुझे बनाया है ना उस मकसद को पूरा करने में भी मुझे आपकी क्या चाहिए, मदद चाहिए। इयाका नअबुदु असल में मकसद है, और इयाका नस्तईन उस मकसद को पूरा करने के लिए हम अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं। इसकी एक और मिसाल, आखिरी मिसाल आप समझ लें ताकि ये बात जहन में बैठ जाए। आप सफ़र पर जा रहे हो, आप चलो आप फ़र्ज़ करो आप पिंडी से आप लाहौर जा रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी पे सफ़र पे निकले हो, रोड पे निकले हो, रस्ते में आपको गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया, आपको रुकना पड़ेगा, है कि नहीं? आप रुकोगे, मदद के लिए रुकोगे ना, गाड़ी को मदद की ज़रूरत है, आपको भूख लगी है आप खाने के लिए रुकोगे, आपके जिस्म को मदद की ज़रूरत है ना, रुकोगे हमेशा के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, क्यों? क्योंकि वो आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद क्या था? लाहौर। तो आपको यहाँ रुक के थोड़ी मदद लेके फिर आगे चलना है, और रुकने का भी एक मकसद था ताकि बाकी सफ़र पूरा हो सके। समझ में आ रही है बात? हमने क्या किया है, वो जो जो स्टॉप्स आते हैं ना जिंदगी में वही मकसद बन गए हैं। या अल्लाह और खिला दे, और खिला दे, और पेट्रोल डाल दे, और पेट्रोल डाल दे। किस लिए डाल दूँ? बस पेट्रोल बड़ा अच्छा लगता है मुझे। उधर अब आपका मकसद क्या बन गया? इस पेट्रोल स्टेशन से अगले पेट्रोल स्टेशन तक जाना, बस। और कभी कभी कहना है वो पुराना पेट्रोल स्टेशन अच्छा था, वहीं वापस चलते हैं, या अल्लाह वहां दोबारा वापस पहुंचा दे। ये मिसाल आप समझ लें कि हम एक सफर पर हैं और उस सफर पर हमने अल्लाह ताला से मदद मांगी है, क्योंकि जब आप लंबे सफर पर जा रहे हो तो आप थक जाते हो, तो फिर आपको मदद की जरूरत होती है। इयाका नअबुदु वा इयाका नस्तईन, इसमें एक और बड़ी प्यारी बात यह है कि इयाका नअबुदु असल में हमारी कमिटमेंट है अल्लाह ताला के साथ, और इयाका नस्तईन में हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। अल्लाह का मुतालबा किस में पूरा हो रहा है? इयाका नअबुदु। और हमारा मुतालबा किस में पूरा हो रहा है? इयाका नस्तईन। जो चीज़ अल्लाह के लिए है वो पहले होनी चाहिए, जो हमारे लिए है वो बाद में होनी चाहिए। तो इयाका नअबुदु पहले, इयाका नस्तईन बाद में। इयाका नअबुदु इयाका नस्तईन। फिर एक और बहुत ही खूबसूरत बारीक सी चीज़ इस आयत में यह है कि इयाका दो दफ़ा जिक्र करना लाजमी नहीं था। इयाका नअबुदु व नस्तईनु अरबी के कवायद के अतबार से सही है। अगर आप कहो इयाका नअबुदु व नस्तईनु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और मदद मांगते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुरान ने अपनी हिकमत में इयाका का दो दफ़ा जिक्र किया, इसको इतनाब कहते हैं। इतनाब कहते हैं अरबी में जो बात बार बार नहीं की कहने की ज़रूरत थी उसको दो दफ़ा कहना, या दो से ज़्यादा मरतबा भी कहना, इतनाब स्टाइल को इतनाब कहा जाता है। तो कुरान ने यहाँ पर इतनाब का इस्तेमाल किया, इयाका नअबुदु इयाका नस्तईन। इस इतनाब का क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि कुछ मामलात में हमें
अल्लाह ताला की इबादत

0: اهدنا الصراط المستقيم. इसको समझने के लिए इसका मैं सिर्फ अभी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आपको ब्रेक दूंगा। इसको समझने के लिए एक मिसाल समझने, मैंने कल आपको एक अजीब सी मिसाल दी थी। फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास आके कहें आज के बाद नुमान तुम मेरे गुलाम हो, मैं कहूँ चलो ठीक है सही है। अब फ़र्ज़ करें आपने कहा मैं गुलाम हूँ, मैंने कबूल कर लिया, और फिर मैं बैठा हूँ आपके साथ सोफे पे आधा घंटा, 20 मिनट 40 मिनट, आपने कुछ कहा ही नहीं। फिर मैं कहूँ अच्छा गुलाम तो मैं हूँ, कुछ करवाना है? अगर मेरा जो मालिक है वो कुछ कहेगा नहीं कि जाओ घास काटो, घर साफ करो, खाना पकाओ, जब तक वो कुछ कहेगा नहीं तो वो मालिक कैसा हुआ? क्योंकि अगर मालिक कुछ कहे नहीं तो मैंने क्या करना है? अपनी मर्जी, उसके कहे बगैर उसके मालिक होने का, उसके रब होने का नाता पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक रिश्ता है ना, मालिक और रब और अब्द। रब जब तक हिदायत नहीं देगा, इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, अहकाम नहीं देगा, कहेगा ये करो ये ना करो, ये इस वक्त करो ये ऐसे करो, इस चीज़ को सुनो, इस चीज़ पे गौर करो, जब तक वो ये नहीं देगा तो फिर रब सिर्फ कहने का हो गया। मैंने मान तो लिया कि वो रब है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा। ये भी होता है, मैंने ये चीज़ वहाँ US में तो बहुत कम देखी, मुसलमान कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखी। हमारे यहाँ टाइटल्स बहुत मिलते हैं जिनसे कुछ होता नहीं है। तो मुझे फलाने प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया या एडवाइज़र बना दिया, या एक मैं बेना के साथ एक यूनिवर्सिटी थी, मुल्क का नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, हमारी यूनिवर्सिटी का बेना इंस्टीट्यूट के साथ बहुत तावन है। 10 साल पहले की बात है, कुछ भी नहीं किया हमने, लेकिन एक सर्टिफिकेट है, वो तावन है। यानी कहने को तो एक रिश्ता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ है कि नहीं, नथिंग, कहने की बात है बस। और लेकिन वो जो हाथ शेक करते हुए फोटो लेना बहुत ज़रूरी है, वाह बड़े मज़े के हैंड शेक्स होते हैं यहाँ। आप सिर्फ हाथ नहीं मिलाते हैं, कहते हैं फिर पकड़ते हैं फिर ऐसे देखते हैं, क्योंकि उसका असल मकसद हाथ मिलाना नहीं होता, हाथ मिलाने का रिकॉर्ड होना होता है, उसको फ्रेम करना होता है। अल्लाह ताला ने अगर अपने आप को रब कहा है, रब कहा है, तो रब होने का तकाजा यह है कि वो अपने बंदे को बताए मेरा बंदा होने के नाते तुम क्या करोगे। अगर वो बताएगा नहीं तो रब किस बात का हुआ फिर वो? तो क्योंकि हमने अभी खुद ही कहा ना कि हम अब बनने को तैयार हैं, इय्याका नअबुदु, हम आपकी मदद मांग रहे हैं, तो हमने पहली मदद क्या मांगी? एदिना, हमें हिदायत दें, हमें बताएं हम क्या करें। अच्छा अब तो हो गए लेकिन हमें पता नहीं करना क्या है, कैसे करना है। और इस एदिना में दो पहलू आ गए, दोनों इय्याका नअबुदु से भी मुतालिक है, इय्याका नस्तईन से भी मुतालिक है एदिना। यानी हमें हिदायत दें कि आपकी मदद कैसे आएगी दूसरे दर्जे में, और पहली बात हमें हिदायत दें हम इबादत कैसे करें, आपको खुश कैसे करें। पुराने मजाहिब में पता क्या होता था, जो बिगड़ी हुई शक्ल है इस्लाम की, इस्लाम जब अंबिया लेकर आए और फिर आने वाली नस्लें उसको भूल गईं, खुदा को अगर खुश करना है ना तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वो ऐसे ही नहीं खुश हो जाता। कोई ना कोई बकरी ज़बह करके उसका खून डालना पड़ेगा, कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, कोई ख़ास खाना बना के उसके सामने रखना पड़ेगा। आप देखेंगे मंदिरों में और जगहों पे क्या होता है, आप वो खाना लेकर आते हैं और वो सामने पेश करते हैं, ये जी मैंने आपके लिए चॉकलेट केक बनाया है, ये मैंने रखा हुआ है, अब बस आप मेरी ये मन्नत पूरी कर दें। जब तक उस खुदा को कुछ दोगे नहीं वो आपको कुछ नहीं देगा। और ये तमाम मज़ाहिब में, यहाँ तक कि कुछ मज़ाहिब में तो इतना एक्सट्रीम था कि जंग होने वाली है और हम जीत नहीं सकते जब तक फलानी जो देवी है उसकी मदद नहीं आएगी, उस देवी को खून की एक कुर्बानी चाहिए, तो हमारी जो सबसे यंग लड़की है उसको कुर्बान करके पहाड़ी से फेंक दो फिर उस देवी की मदद आएगी। अपनी बच्चियों को वो ज़बह करते थे उस खुदा की मदद लेने के लिए, क्यों? क्योंकि उनका खुदा के साथ रिश्ता और खुदाओं के साथ और देवियों और देवताओं के साथ जो रिश्ता था ना, वो था एक तिजारती रिश्ता।
1: ट्रांजैक्शनल,
0: हम कुछ देंगे फिर वो कुछ हमें देगा।
1: फातिहा में शुरू से ही अल्लाह ताला ने हमसे कुछ मांगा, पहले अपनी नेमतें बताएं।
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने कुछ किया कि उसने किया है?
1: उसने हम के मुस्तहिक चीजें की हैं खुद।
0: फिर उसके बाद अर रहमान अर रहीम,
1: हमने कुछ किया है भी कि वही कर रहा है?
0: वही कर रहा है,
1: यानी शुरू से ही हमारे किए बगैर हमें दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। अब हमें कुछ शर्म आई,
0: हमने कहा मेरे रब हम क्या करें, आपने इतना कुछ कर दिया, अब हमसे भी तो कुछ करवा लें,
1: हमारे नाम क्या खिदमत है? और वो क्या है? एहदिना,
0: एहदिना, हमें कुछ तो कह
1: दें। आप मुझे ये बताएं, हम जितना भी कर दें, अल्लाह ताला जो हमारे लिए करते हैं उसका मुकाबला किया जा सकता है
0: ना?
1: तो ये एहदिना में भी जो अल्लाह ताला हम से जो हम हिदायत मांग रहे हैं ना, वो असल में अल्लाह ताला को पहचानने के बाद कम अज़ कम हमारे रब हम इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हम आपका कभी हक तो अदा कर नहीं सकते, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ है जो हम अगर पूरी कर दें तो आप हमसे राज़ी हो जाएं, आप हमारी इबादत कबूल कर लें, तो वो बता दें वो क्या होगी। यह है एहतिना। और फिर एहतिना के अंदर अगर कहा होता मुझे हिदायत दे दें, एहतिनी एहतिनी अस्सिरातुल मुस्तकीम, लेकिन हमने एहतिनी नहीं कहा, क्या कहा है? एहदिना। अच्छा, शुरू में जब हम्द की थी ना, जब मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ दिल से, तो मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा होता। किसके बारे में सोच रहा होता हूँ? अपने बारे में। जब मैं अल्लाह के बारे में कहता हूँ अर रहमान अर रहीम, अल्लाह की जो मोहब्बत है उसका मेरे लिए ख्याल है, किसके बारे में सोच रहा होता हूँ? अपने बारे में, इनफरादी बात है। मालिक यौमिद्दीन, मुझे आपकी फिक्र होती है, अपनी फिक्र होती है? अपनी फिक्र होती है। अभी तक जो सारी बात हो रही थी वो फर्द की थी, मेरी थी, तो यहां तक जो बात पहुंची तो मुझे कहना क्या चाहिए था, तवक्को क्या थी? मुझे हिदायत दें। अभी तो बात, हर बात का इशारा मेरी तरफ वापस जा रहा है, मैं रब, मैं अब्द हूं। लेकिन इबादत की और हिदायत की जो तलब हमने की है वो इकट्ठे की है, इसमें भी एक बात की तरफ इशारा है कि यह हिदायत अकेला इंसान नहीं कर सकता, अकेले इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए। हमें इकट्ठे हिदायत दें। और इसमें एक खुद गर्जी से भी निकाल दिया हमें, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, बाकी भाड़ में जाए बस मैं और तू। नहीं नहीं नहीं, इसमें अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की फ़िक्र करना भी सिखाई। अगर मेरे रब में इतनी रहमत है, इतनी मोहब्बत है, इतना ख्याल है, और उसने मुझे बनाया है, तो मेरे अंदर भी उसकी कुछ झलक तो आएगी ना, कि मुझे भी किसी और का ख्याल है, मुझे किसी और से भी मोहब्बत है। और जो चीज़ मैं अपने लिए इतनी बुरी तरह चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता, मैं सबके लिए चाहता हूँ। यह आखिरी जो तामुल है, इसके बाद मैं आपको ब्रेक देने लगा हूँ, ज़रा सोचना इसके बारे में। अगर इसका मफहूम आप वाकई समझे हैं, मुझे हिदायत देने कहा, हमें हिदायत दें कहा है, अगर इसको वाकई हम समझते हैं, इसका मतलब पता है क्या है? मुझे औरों के लिए क्या चीज़ चाहिए? जो हिदायत मुझे अपने लिए चाहिए, वही हिदायत मुझे उसके लिए चाहिए। और जिस नरमी से और जिस नरम दिल से मैं अल्लाह ताला से हिदायत मांगता हूँ ना, उसी नरमी से मुझे किसी और के लिए भी हिदायत चाहिए। तो जब आप किसी को बड़ी नफरत से हिदायत देने की कोशिश करते हैं, जब आप ये लोग तो जहन्नमी है, जहन्नमी, इनको देखो काफिर हैं, ये काफिर, ये फलाने ऐसे हैं, ये फलाने मुशरिक हैं, ये फलाने जिस जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये एहतिना की रूह से सही है कि नहीं? अगर वाकई एहतिना समझे हो, और कोई बहुत ही गलत रास्ते पर है, बहुत ही गलत रास्ते पर है, इस फातिहा के पढ़ने में आपने उसके खिलाफ दुआ की है कि उसके लिए दुआ की है? उसके लिए दुआ की है, उसके लिए। और जिस जज्बे से अपने लिए दुआ की है, उसी जज्बे से उसके लिए दुआ की है। ये नहीं कहा अल्लाह मुझे हिदायत दे और उनको भी दे दे फिर भी हाँ चले उनको भी थोड़ी बहुत। एहदिना, हम सबको इकट्ठे एक जैसे
2: जो मैं अपने लिए चाह रहा हूं और जिस तरीके से अपने लिए चाह रहा हूं उसी तरीके से किसी और के लिए भी चाह रहा हूं। हमारा आजकल क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और ऐसा दौर इंसानियत पे गुजर रहा है कि हम एक दूसरे के अफकार को, एक दूसरे की बातों को अब दुनिया के हर कोने में इस तरह सुन सकते हैं जैसे पहले कभी नहीं सुन सकते थे। इसी तरह इस्लाम और इस्लाम से मुतालिक जो बातचीत हो रही है वो अब जिस लेवल पर हो रही है और जितनी ज़्यादा हो रही है पहले कभी नहीं हो सकती थी, राइट? हर तरह के लोग हर तरह की बात इस्लाम के बारे में भी कर रहे हैं, आपको मालूम है। लेकिन एक जायज़ा मेरा क्या है कि अक्सरियत बात जो इस्लाम के बारे में हम करते हैं ना, वो हम किसी और की तनकीद करते हैं। अक्सरियत ये गलत इसलिए है, फलाना गलत इसलिए है, इसकी बात इसलिए नहीं सुनो, इसको इस तरह गलत साबित करूँगा, इसकी इस तरह धज्जियाँ उड़ाऊँगा। और फिर वो जवाब में क्या कहता है, अच्छा मैं गलत हूँ, मेरी वीडियो देखना कि तुम कितने गलत हो। और एक दूसरे की गलतियाँ, और ये दोनों फिर गलत वीडियो, एक दूसरे की गलतियाँ वीडियो रिलीज़ करने के बाद फिर नमाज का टाइम होता है और दोनों इकट्ठे खड़े होकर कहते हैं अपने अपने घरों में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हयात का मजाक नहीं बना लिया हमने? और ये कोई बहुत गहरी तालीम है जो बहुत बहुत कुरान पढ़ने के बाद कई सालों बाद जाके समझ में आएगी, तो पहले सफ़े पर है यार। ये तो जब आपने इस्लाम कबूल किया था तब से आपके जहन में ये बात आनी चाहिए थी कि मुझे बाकी इंसानियत की फिक्र है, मुझे उनको गलत साबित नहीं करना, मुझे उनके लिए भलाई चाहिए। और जो रहमत मुझे अल्लाह दे रहा है उसी रहमत का तकाजा है कि मैं लोगों के साथ भी रहम से, मोहब्बत से, इखलास से, खलूस से बात करूँ। और अगर बिना वाकई किसी के साथ इख्तिलाफ़ है मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी गुमराही में पड़ गया है। मुझे फिक्र है क्या करूँ, वीडियो बनाऊँ उसके बारे में? अगर आपको किसी की फिक्र हो, अपने कज़न की फिक्र हो कि वो किसी गलत रास्ते पर चढ़ गया है, तो आप उसकी वीडियो बनाओगे कज़न की? मेरा कज़न जो है वो, मुझे लग रहा था कि वो शराब पीना शुरू कर दी उसने, तो मुझे उसकी बहुत फिक्र है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद है कि वो हिदायत के रास्ते पर आ जाएगा। अपलोड। या आपने उसके साथ मोहब्बत की है या उसके साथ नफरत की है? ये नफरत नहीं है। अगर वाकई उसकी फिक्र है तो क्या करते? उसके घर जाते, उसे गले लगाते, उसे साथ बिठाते, उसे कहते मेरे भाई हो तुम, क्या कर रहे हो, नहीं करो ऐसे, कब शुरू हुआ ये, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आओ मैं तुम्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर लेके जाता हूँ, किसी से बात नहीं करूँगा, ये तुम्हारे मेरे दरमियान है। और ये किस चीज़ का तकाजा है? मोहब्बत का। एक तरफ तो खुतबा हो रहा है इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं, और दूसरी तरफ अपने भाई के ऊपर वीडियो बन रही है। भाई से बात कभी की है? नहीं नहीं नहीं। और फिर दूसरी बात, बात भी करोगे ना, अगर कोई कहे कि नहीं मैं उससे खुद बात करूंगा, उन लोग कमेंट में भी लिखते हैं आप उससे खुद ही बात करें, हाँ मैं करूंगा बात उससे, वो बात करो, वो बात को रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो बना के दिस इज एहदिना नाउ, ये नया एहदिना है। इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन एहदिना। अगर मैं तो कहता हूं अगर मुसलमान फातिहा पे गौर कर लेना तो उम्मत की शक्ल बदल जाए, हमारा पूरा डिस्कोर्स बदल जाए, किस किस्म का हम मवाद तैयार करते हैं, कैसे हम बात करते हैं, हमारा उसलूब क्या होता है, हमारा एटीट्यूड क्या, सारा का सारा बदल जाए। और अभी हम इस आयत में दाखिल नहीं हुए, सिर्फ इसका मैं ताल्लुक दिखाना चाह रहा था पिछली बातों से। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि हमने अल्लाह से दावा किया ना कि हम इबादत करने को तैयार हैं और हम मदद चाह रहे हैं, तो कैसी मदद हो और कैसी इबादत करनी हो उसके लिए अल्लाह ताला हम सबको इकट्ठे अपनी हिदायत दें। ओके, दो सवाल थे, इसमें से एक मुझे याद आ रहा है इबादत के बारे में, इबादत के कॉन्सेप्ट के बारे में, इय्याका नअबुदु। क्योंकि इस आप सबको इल्म होगा कि जो हिदायत हमने मांगी है इस सूरत में उसका जवाब बाकी कुरान है, यानी उसके जवाब में अल्लाह ने हमें ये पूरी किताब दी है, तो इसका मतलब ये होगा कि इबादत, इसकी तमाम तालीमात को इबादत ही समझा जाएगा। और इसकी तालीमात में नमाज शामिल है, इसमें कोई शक नहीं,
1: زکوٰۃ شامل ہے اس میں کوئی شک نہیں، روزہ شامل ہے، حج شامل ہے، لیکن اس کی تعلیمات میں تدبر بھی شامل ہے، اس کی تعلیمات میں سوچنا بھی شامل ہے، سیکھنا بھی شامل ہے، اس کی تعلیمات میں غور کرنا، تاریخ کے بارے میں سیکھنا، اس کی تعلیمات میں جذبات کو سمجھنا، مختلف جذبات کو سمجھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشکل سے گزرے اس پر غور کرنا، یعنی عبادت کا کانسیپٹ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت واضح ہوتی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن اس قرآن نے اس کانسیپٹ کو بہت بڑا بنا دیا۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں آپ کو قرآن ہمیشہ عمل میں لانا چاہیے، ایک ایک آیت کو آپ عمل میں لائیں۔ میرا سوال یہ، آپ الف لام میم کو عمل میں کیسے لائیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ عمل میں کیسے لائیں گے؟ عمل میں لانے کی وہ آیات ہیں جن میں عمل کا مطالبہ ہے، اور آیات میں تدبر کا مطالبہ ہے، سوچنے کا مطالبہ ہے، دل کے لرزنے کا مطالبہ ہے، مختلف قسم کے مطالبے ہیں۔ ہر مطالبہ عمل نہیں ہے، عمل تو ایک پہلو ہے عبادت کا، لیکن عبادت کے اور بہت سارے پہلو بھی ہیں، اور کیونکہ باقی مذاہب میں ان سب کو الگ الگ کر دیا گیا، فلسفی اور ہو گئے اور عبادت کرنے والے اور ہو گئے اور احکام پہ زور کرنے والے اور ہو گئے اور جو ہے روحانیت کو سمجھنے والے اور ہو گئے، انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کھول لیے۔ قرآن نے کیا کیا، ان تمام چیزوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھا اور ایک کو دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا، اور یہی اصل عبادت ہے، اصل عبادت یہ ہے۔ اور یہ کانسیپٹ عبادت کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جتنا آپ اس پہ غور کرو گے آپ کا کانسیپٹ خراب نہیں ہوگا، جتنا اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے عبادت کے کانسیپٹ میں کمزوری اور کمی آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ ہم کہیں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے عبادت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ کمائی کر رہا ہے اپنی فیملی کے لیے تو یہ نہیں کہیں گے عبادت کر رہا ہے، رائٹ؟ جب سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی تیاری کر رہے تھے وہ عبادت کر رہے تھے، لیکن ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ عبادت ہے۔ جو تجارت کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے حلال روزی کما رہا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اس کا ایک جو جامع تصور ہے نا، اس کو اپنے سامنے رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ خیر، تو یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات تھی مضارع کے بارے میں کہ ایاک نعبد، میں یہ نہیں کہا ایاک عبدنا و ایاک استعنا، ہم نے آپ کی عبادت کی، ہم نے آپ کی مدد مانگی، یعنی ماضی میں کہا جا سکتا تھا، لیکن مضارع استعمال کیا ہے۔ مضارع عربی میں مضارع جو ہے نا، یہ حال اور مستقبل دونوں کو شامل کرتا ہے، تو میں نے ترجمہ ایک طرح کیا تھا لیکن اصل میں ترجمہ دونوں طرح ہے۔ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور کریں گے، ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں اور مانگیں گے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں مانگتے رہیں گے، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ بھی صحیح ہوگا، مانگتے رہیں گے۔ تو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے، ابھی کی اور فیوچر کی، مستقبل کی، ان الفاظ کے ذریعے سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اوکے، دوسرا ایک سوال آیا تھا العالمین کے بارے میں پہلے، کہ العالمین میں تفسیر میں اکثر و بیشتر یہی کہا جا رہا ہے کہ العالمین میں نباتات، جمادات، پرندے، جانور، جنات، تمام عالم، تمام دنیائیں، تمام جہانوں کا مالک نا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ، جہاں تک میں نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے نا، تو قرآن کے الفاظ میں دو طرح کے مفاہیم ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے المعانی الاوائل اور دوسرے المعانی الثوانی۔ انگلش میں سمجھنے، پرائمری میننگز، سیکنڈری میننگز، پہلے درجے کے معنی، دوسرے درجے کے معنی، اور یہ قرآن میں بہت جگہ ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا غلط ہوتا ہے۔ میں ڈاکٹر فاضل صالح حسام رائی کے کام سے بہت متاثر بھی ہوں، انہوں نے قرآن کی بلاغت پہ بہت کام کیا ہے، عربی میں ہی کام کیا ہے، عراقی ہیں وہ، سامراء سے، ابھی بھی بغداد میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے العالمین کی جو شرح کی تھی اس کے سٹرکچر کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور میرے نزدیک یہ بات نہ صرف کانٹیکس کے اعتبار سے سینس رکھتی ہے، اور اس کو پرائمری رکھنا چاہیے اس صورت میں
2: جو اوائل معنی ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اوائل معنی کون سے ہیں، انکار نہیں کیا جا رہا ایک کا یا دوسرے کا، لیکن پہلے درجے کے معنی کس کے ہیں، نمبر ون پہ کس کو رکھنا ہے، نمبر ٹو پہ کس کو رکھنا ہے. میرے نزدیک نمبر ون پہ ذوی العقول، اینا سے ذوی العقول نکلتے ہیں، یعنی فرشتے، جن، انسان، روحیں، یہ تمام العالمین میں شامل ہوں گی، اس دنیا میں یا آخری میں، اگلی دنیا میں. لیکن کیونکہ اس سورت کا اصل مقصد انسانیت سے خطاب ہے اور اس کا اصل مقصد ہدایت ہے ہمارے لیے، اس لیے پہلی پریفرنس میننگ کی اس معنی کو دینی چاہیے جو اس کے ساتھ فٹ کرتی ہے. تو سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے معنی کو پہلے درجے پہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، خیر.
3: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
2: جس طریقے سے انسان مانگتا ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے اس کو کس کی کتنی ضرورت ہے. آپ کے بچے آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں مجھے 500 چاہیے، مجھے 1000 روپے چاہیے. جس طریقے سے مانگ رہا ہے، مانگنے دینے کا دل نہیں جاتا. پھر آپ بچے کو تمیز سکھاتے ہیں کہ پوچھا کا تمیز سے پوچھا جاتا ہے، ادب سے پوچھا جاتا ہے، اور پھر آپ نماز پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کو تو تمیز سکھا دی کہ مجھ سے کیسے پوچھتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں. اے دل سراط المستقیم.